0: क्यों होंगे कि बाबा जी गुलाम मुस्तफ़ा, जैसा कि आपने सुना होगा कि वो इस जहाँ से जो है हमें छोड़ के चले गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जनाब हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो इस पाकिस्तानी कम्युनिटी डेनमार्क में जो खिदमात थी, अल्लाह ताला उनको जो है वो कबूल फरमाए। आज हम बात करेंगे उनके हवाले से और 12 बजे से 12:30 बाशी के संग जनाब नसर मलिक साहब और बाशी कुरैशी करेंगे। फिर 12:30 से 2 बजे जनाब हम हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब की याद में जो है ये प्रोग्राम करेंगे। और अगर उसमें आप भी शामिल होते होना चाहते हों तो टेलीफोन नंबर है हमारा 33 21 29 84, 3 3 2 1 2 9 8 4। सामीन और नाज़रीन, आज माँ का दिन भी है और माँ का दिन जो है वो बड़ी खुशनूबी से जो है वो मनाना चाहिए और माँ को जो है वो हमेशा जो है वो याद रखना चाहिए। जिनकी माएँ सलामत हैं उनकी आप खिदमत करें और जिनकी चली गई हैं उनके लिए दुआए मगफरत और उनके लिए सदक़ा जारिया का वसीला बने। तो आज हम जो है वो माँ के हवाले से भी बात करेंगे और हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब के हवाले से भी जो है वो बात होगी। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब बाशी कुरैशी साहब। बाशी कुरैशी साहब जो हैं हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब को काफ़ी अरसे से जो है वो जानते थे और पिछले 10-12 साल से जो है वो रेडियो हम वतन पे इकट्ठे प्रोग्राम भी करते रहे हैं। तो बाशी साहब आपके पास चलते हैं और आप जो है अपने इस प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाइएगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। आज का ये जो प्रोग्राम है ये मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता होने के तवस्से से है, क्योंकि रेडियो हमवतन के साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा है और जो ताल्लुक़ पैदा हुआ उसमें जनाब हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं भी जो है बाबा जी की फौतगी पे आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, रेडियो हमवतन के जितने सुनने वाले, चाहने वाले और उनके दोस्त अहबाब हैं उनसे जो है मैं बड़ी हमदर्दी का जो मेरा ताल्लुक़ है और जो हमारे गहरे रंजो गम का जो इजहार है मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाकई रज़ा भाई ये अल्फाज बहुत कम हैं। और क्योंकि हम इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं तो मैं आंसू भी नहीं बहाना चाहता, लेकिन यह है कि दिल मेरा जो है ना वो रो रहा है, क्योंकि मैं उनको हमेशा बाबा जी कहता था, हालांकि मेरे और उनकी उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन यह है कि वो एक बहुत मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत थे, लेकिन उनका जो मेरे साथ ताल्लुक़ है वो रेडियो से भी ज़्यादा वो गहरा है। आपको याद होगा कि रेडियो हमवतन पे काम, मतलब आपके साथ काम करने से पहले जो है आप कभी कभी मुझे बुलाते थे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, डेनमार्क की सियासत या बैन अल-अक़वामी अमूर पे बातचीत करने के लिए। तो मैं उसका थोड़ा सा जो है बहुत डरता था, क्योंकि पिछले 50 साल में मैंने इस उर्दू इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ इंग्लिश, डेनिश और दूसरी ज़ुबानों में अपना काम किया है। तो मैं समझता था कि मेरी जो है इतनी उर्दू अच्छी नहीं है कि मैं आपके जो रेडियो प्रोग्राम में आके जो है ना बात करूं। लेकिन एक दफ़ा जो है वो मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि बात सुने, अगर आपको इस चीज़ का ख़्याल है कि उर्दू आपके अच्छे नहीं तो मैं आपको उर्दू भी सिखा दूंगा और आप जब रेडियो पे हमारे साथ प्रोग्राम करेंगे तो आपकी उर्दू जो है وہ خود